0: ପ୍ରଚାର କଲୁ କେତୋଟି ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और बाधाओं ने ये साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
2: इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: श्री मोदी ने बताया कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली पर आम सहमति बन गई है। आपदा प्रबंधन के लिए भी पूर्व चेतावनी डेटा एकीकरण दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
2: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
1: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है।
2: स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
1: सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं टिका सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले तीन दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला भी दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 1, 2, 3, 4.
1: सुनो, चा नियो। अरे, चा नियो मो।
2: देलो।
1: कौन एमिति गणी पकौछ जे?
2: अरे, खबर कागजर चारि पृष्ठा उल्टेलेनी, स्थानीय खबर गोटे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इत्ते काई की? आम रेडियोटा अन कलानी? मीडियम वेब्रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे आम आकाशवाणी भवानी पटना ट्यून करो प्रत्येक दिन सकाळ 10टा बजे 10 मिनिट रु 11टा बजे 10 मिनिट जाय स्थानीय खबर आ मनपसंदर गीत को नी कार्यक्रम।

0: हेलो
1: किए
0: आपणक सह किछि मीठा मीठा कथा किछि अनुभव किछि अनुभूतिर कथा
1: आम सह कथा हुवंतु फोन माध्यमरे प्रत्येक गुरुवार दिन 11:30 पर्यंत
0: आम फोन नंबर हैला
2: 0667025623295628
1: मने रखंतु 0667029562329562628 एवं एहार प्रसारण सुनंतु प्रत्येक रविवार दिन 9:00-10:00 पर्यंत।
3: हेलो
0: हेलो
1: किए
0: हेलो आकाशवाणी भवानी पाटना।

0: सूचना
1: ओ मनोरंजन
0: कार्यक्रम शुणुछन्ति आकाशवाणी भवानीपाटणा केन्द्रु कार्यक्रम आम केन्द्रु प्रचारित हेउछि मीडियम वेभ्रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जुगे एफएम माध्यमरे 100.3 मेगाहर्ट्ज जुगे ओ न्यूज अन एआईआर एप माध्यमरे वर्तमान प्रचार करुछु ओडिया आल्बमरु किछि गीत विभिन्न शिल्पीक कण्ठरे प्रथमे शुणन्तु गीतटि शिवांक कण्ठरे गीत रचना करिछन्ति विजय मल्ल संगीत प्रेम आनंद

0: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता और दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं ब्रिक्स की शक्ति हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी हमारी विविधता हमारी पहचान रहे हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है चुनौतियों को समय रहते पहचानना उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है
1: स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा इसके माध्यम से एआई जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ

0: जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
0: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिशकनक, आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
1: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिए संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की, जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल-सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
1: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
4: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई, भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
1: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
5: ये बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में

0: जो हुआ एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में ये आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परम्परा का स्वामी है।
2: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
1: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गिर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାହ୍ନ 3 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में अपने संबोधन में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

दुनिया हमसे केवल आइडियाज और कमिटमेंट्स नहीं कॉन्क्रीट रिजल्ट्स की अपेक्षा करता है। मुझे विश्वास है कि हम साझा प्रयासों से इन अपेक्षाओं पर जरूर खरे उतरेंगे। न्यू दिल्ली समिट को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी का

0: चीन को शुभकामनाएं भी दी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन आज भागीदार देशों के मुख्य सत्र में कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया है कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। जहाज के अंतिम ज्ञात स्थान के आसपास तलाश अभियान जारी है। यह नौका पूर्वी जावा से दक्षिण कालिमंतन प्रांत जा रही थी। मौसम विभाग ने आज गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें राज्य के कई हिस्सों खासकर दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नवसारी और वलसाड़ समेत कई जिलों के साथ साथ दमन और दादरा नगर हवेली में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमें बिना कोई मैच हारे फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today said BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions, and the discussions over the past 2 days have further strengthened this conviction. During his concluding remarks at the BRICS session on resilience, innovation, cooperation and sustainability, Mr. Modi hoped that the new Delhi Declaration adopted at BRICS Summit will provide a clear direction for shared vision and future cooperation. He stressed on the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact. He said BRICS nations will work together to ensure that the BRICS framework moves beyond mere documentation and creates a tangible impact in real life.

0: ଆଜିର ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଆକାଶବାଣୀ ଭାନିପାଟଣା ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आज लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने
3: अच्छा जदि कई नुआ व्यवसाय आरंभ करबा को चाहंती से कोन ही कार्यक्रम रे आवेदन करि परिबे
4: ना एही कार्यक्रम टी सक्रिय थिबा महिला परिचालित उद्योग गुडी कर विकास पाई आवेदनकारी अति कम रे 12 मास धरि सक्रिय थिबा स्वयं सहायक गोष्ठी रो सदस्य होइथिबा आवश्यक।
3: एहा द्वारा केउ माने लाभान्वित होइ परिबे
4: व्यवसाय रे वार्षिक आय पाई निर्धारित मानदंड पूर्ण करबा को हेबो। पंजीकृत व्यवसाय पाई 20 लाख टंका, गोष्ठी भित्तिक उद्योग पाई 15 लाख टंका एवं व्यक्तिगत उद्योग पाई 12 लाख टंका वार्षिक आय रहिबा आवश्यक।
3: जदि जीएसटी एफएसएस एआई किंबा अन्यान्य पंजीकरण आवश्यक हुए सेति पाई कोन सहायता रहिछि
4: एही प्रोग्राम माध्यम रे वैषयिक ओ आइनगत सहायता प्रदान करा जिवो। एहा सह व्यवसाय परामर्श उत्पादर गुणवत्ता वृद्धि

6:30 युवा शक्ति राति 7:25 जिला हलचल शुणे संबलपुर जिलार हलचल ए समस्त कार्यक्रम लेखि प्रचार कर आकाशवाणी कटक केन्द्र आसंताकाली राति 7:30 कार्यक्रम चासपास हिंदी भक्ति गीत प्रचार कर राति 8:00 शिल्पी मैंने पृथ्वी गंधर्व शंकर महादेवन और नरेश रैना राति 8:15 संबलपुरी गीत शिल्पी मैंने राजेन्द्र कुमार बेहरा और विजय कुमार नायक आसंताकाली राति 8:30 स्पोर्ट्स स्कैन राति 9:15 स्पॉटलाइट राति 9:30 पब्लिक स्पीक ए समस्त कार्यक्रम लेखि प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली आसंताकाली राति 10:00 प्रचार कर गीतनाट्य श्री गणेश रचना गोपाल छोटराय प्रयोजना नयन किशोर महांति श्रोता बंधु एथिला आसंताकाली आम केन्द्ररु प्रचार हेबाकु थिबा केतोटी मुख्य कार्यक्रम संपर्क करी सूचना आपण कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी भवानीपाटणा केन्द्ररु कार्यक्रम प्रचारित होउछि मीडियम वेबरे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ज एफएम माध्यमरे 100.3 मेगाहर्ज एवं न्यूज ऑन एयर एप माध्यमरे

0: 1, 2, 3, 4.
1: सुनो, चाय नियो। अरे, चाय नियो मो।
2: देलो।
1: कौन है मिति गाँडी पकाऊँ चाहे?
2: अरे खबर कागज़ रो चारी पृष्ठा उल्टे लेनी, स्थानीय खबर कोट्टे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इत्ती कहीं की? आमो रेडियो टा ऑन कॉलनी? मीडियम वेवरी 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे बा न्यूज़ ऑन एआईआर एप माध्यम रे आमो आकाशवाणी भवानी पटना ट्यून करो प्रत्येक दिन सकाळ 10टा बजे 10 मिनिट रु 11टा बजे 10 मिनिट जाए स्थानीय खबर आ मनपसंदर गीत को नी कार्यक्रम खो

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: हेलो
3: हेलो
2: किए
4: आपणक सह किछि मीठा मीठा कथा किछि अनुभव किछि अनुभूति रा कथा
2: आम सह कथा हुवंतु फोन माध्यम रे प्रत्येक गुरुवार दिन 11:30 पर्यंत।
4: आम फोन नंबर हैला
5: 0667029562329568।
2: मने रखंतु 0667029562329568 एवं एहार प्रसारण सुनंतु प्रत्येक रविवार दिन 9:30 पर्यंत। हेलो
3: हेलो
2: किए
4: हेलो आकाशवाणी भवानी पाटना।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: श्रोता बंधु आपण कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी भवानीपाटणा केन्द्र समय संध्या 6:20 हाँपी जा संस्कृत संवाद शुणु रिलेख रिपोर्टर करुचु आकाशवाणी दिल्ली।
3: संप्रति वार्ता श्रूयता प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। ब्रिक्स संघः न तावत् केवलं राष्ट्राणां परिगणित समुदायमात्रः अपितु वैश्विक विषमतानां परिहाराय एका अनन्यथा सिद्धा समाधान पारिस्थितिकी प्रणाली वर्तते इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवदिल्ली घोषणापत्रं ब्रिक्स देशानां भावी सहयोगस्य अबाधित मार्गदर्शकम् इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य आह्वानम् प्रयोगशाला निर्मित वज्राणां समग्रा उत्पादन श्रृंखला भारतस्य प्रभुत्वे एव अवचिन्ना तिष्ठेत्। अपि च दुबई नगरे निवर्त्यमानायाः T20 एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः चरमे सोपाने अद्य भारतं श्रीलंका दलेन सह पक्ष प्रतिपक्ष भावेन सम्मुखी भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अवोचत् यत् ब्रिक्स न केवलं राष्ट्राणां समूहः अपितु समाधानानां किञ्चन पारिस्थितिकी तंत्रमस्ति। विगत दिनद्वयस्य गहन चर्चाभिः अयं दृढविश्वासः अधिकः सुदृढः जातः। सुदृढता नवाचारः सहकारः सतत विकासश्च इत्यादिषु विषयेषु आयोजिते ब्रिक्स सत्रे स्वकीय समापनाभिभाषणे श्रीमोदी आशां प्राकटयत् यत् शिखर सम्मेलने अंगीकृतं नवदिल्ली घोषणापत्रं प्रकाशित दृष्टिकोणेन भविष्यत् सहकाराय च स्पष्टां दिशं निर्दिशेत्। तेन सर्वाणि परिणामात्मक लक्ष्याणि समयबद्ध कार्येषु परिणामयितुं अन्त्योदय प्रभावं जनयितुं च आवश्यकता प्रतिपादिता। सः प्रत्यपादयत् यत् ब्रिक्स प्रारूपं केवलं अभिलेखीकरणं विहाय वास्तविक जीवने प्रत्यक्ष प्रभावं उत्पादयितुं सदस्य राष्ट्राणि परस्परं मिलित्वा कार्यं करिष्यन्ति।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे इसके लिए

0: निवेश, अंतरिक्ष, रेल, शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जनसंपर्क क्षेत्रेषु च कूटनीतिक संबंधानां अनन्यथा सिद्धत्वं सुदृढीकर्तुम् अंगीकारं प्रापतुः। रत्नाभूषण क्षेत्रे स्वावलम्बनस्य आह्वानं कुर्वन् गृहमंत्री अमित शाहः मुंबईयां उपस्थापयत् यत् प्रयोगशाला निर्मित वज्राणां समग्रा पारिस्थितिकी प्रणाली निर्माण श्रृंखला पूर्णतया भारते एव नियंत्रणीया। मंत्रिणा उद्घोषितं यत् भारतस्य पार्श्वे अस्मिन् नवसरे विजय प्राप्त्यै पूर्णा क्षमता वर्तते। समारोहे राज्यस्य मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे च उपस्थितौ आस्ताम्। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनाम् अन्ताराष्ट्रिय स्वीकृतिम् उद्घोषयन् आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः प्रावोचत् यत् ब्रिक्स घोषणापत्रे TCIM इत्यस्य समावेशः भारतस्य महती सम्पूर्तिः अस्ति। मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् वैज्ञानिक अनुसन्धानैः गुणवत्ता नियन्त्रणैः च आयुर्वेद पद्धतिं विश्वस्तरे प्रतिष्ठापयितुं प्रशासनम् अनवरतं प्रयतते। महिलानां 20-20 एशिया चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमे चक्रे अद्य दुबई नगरे भारतस्य प्रतिस्पर्धा श्रीलंका दलेन सह भविष्यति। इयं निर्णायक स्पर्धा भारतीय समयानुगुणं रात्रौ 8 प्रारप्स्यते। उभे अपि दले भारतं श्रीलंका च स्पर्धायाम् अपराजिते भूत्वा अन्तिम चरणं प्रविष्टे। महिला एशिया चषकस्य इतिहासे 7 विजेता भूत्वा भारतीय दलं सर्वाधिक सफलं दलम् अस्ति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी भवानीपटना आदिवासी गीत क्रमरे प्रचार करुछु मादळी गीत परिवेषण करुछन्ति अनंत माझी ओ साथी। तेबे ता पूर्वरु एही सूचना
2: समस्तक पई सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: ए पर्यंत यही योजना रे 8.85 लाख रु अधिक लाभार्थी जुड़ी ही सारे। जदि आप 18-40 वर्ष बयस होती तेरे मासिक अटल पेंशन सहित 3 ग्यारंटेड सुविधा विषय जानवापी आपण बैंक शाखा सह जोजोग कर।
4: किला काटी माछ मारला, किला काटी माछ मारला, कोंदा गड़िया पिला, कोंदा गड़िया पिला गुरु भी।

कड़कड़ाला कुखुरा नै पल्सा गजर छाइ पल्सा गजर छाइ गुरुबै पल्सा गजर छाइ खाए बलि करी कहती मई खाए बलि करी कहती मई कन्दागढ़ अन्त माझी कन्दागढ़ अन्त माझी गा कन्दा।

0: मंदिर न भिल जोरसोर प्रस्तुति चलिए समलेश्वरी पीठन मंदिर रंग काम सरीवर बेले आईज पार्श्व देवादेवी को सिंदूर लगे से माँ अलंकार सफा कम भिल आईज कर आईवा काल अलग पूजक मान पर नुआ धान आसवा ई नुआखाई तिहार संबलपुर सहित बरगढ़ बलांगीर सुंदरगढ़ कलाहांडी झारसुगुड़ा नुआपड़ा बौद्ध आउ आठमल्लिक बागीर इलाका मानके उषत उष्णाके सहित पालन कराएसी ढेंकानाल जोरंदान प्रसिद्ध महिमा गादीन आईज महिमा धर्मर बाबा आउ साधुमान को नुआखाई अवसर पहला नवान्न परेषण कर बर्ज्यवस्तुर सठिक परिचालन के आहरी बरकस करबार लगे केन्द्र सरकार कठिन बर्ज्यवस्तु परिचालना नियम 2026 लागू करिछन। नुआ नियम थी उत्पत्ति स्थल न जगड़ा के चार प्रकार भाग करवाटाके बाध्यतामूलक कराइछे। खुला जगह न जगड़ा फिकवार की ताके जलावार लगी परिवेश प्रदूषण हेसी हेतिर लगी एंता कामनु दूरे रहबार के सरकार तरफ लुक को सचेतन कराउछे। प्लास्टिक जगड़ा कम करबार लगी थरे व्यवहार होतवा प्लास्टिक कमाबार सहित सठिक संग्रह आउ पुनः चक्रण उपरे जोर दिया नियम उल्लंघन क्षेत्र थी नुआ नीति अनुसार क्षतिपूरण आदायर व्यवस्था रही है। जगड़ा के खाली आवर्जना हिसाब से नाई देखिकर ताके फेरघाए व्यवहार आउ पुनः चक्रण जरिए संपत्ति बदलावाटा हूँ नुआ नियम मूल लक्ष्य। बर्ज्यवस्तुर पृथकीकरण आउ ठीक भाव निष्कासन लगे गोटे स्वच्छ सुस्थ आउ सबुज भारत गठन संभव हो पार्बा। पुरी श्रीमंदिर न आईज महाप्रभुमानकर निकुंज लीला हवा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उतरु श्रीमंदिर न चली श्रीकृष्ण लीलाती आईज संध्या धूप उतारु ई स्वतंत्र विधि पालन करा। भूदमासर उज्जवल पखर द्वितीय तिथि दिन रामकृष्ण नाटमंडप न विजय हेबार उतरु हरचंडी साही लोके ई स्वतंत्र लीला प्रस्ताव करबे। सुस्थ जीवन लगी सुषम आउ पौष्टिक खाइबार गुरुत्व बाबदे सचेतन करबा लक्ष्य थी राइजे आईबा 9 तारीख तक पोषण मास जारी रहा। ये अवसर में भिन्न भिन्न सचेतनता कार्यक्रम पोषण प्रदर्शनी आलोचना चक्र आउ स्वास्थ्य शिविर मान आयोजन कराउछे। छुआ मानकर सुस्थ विकास आर मानसिक आउ शारीरिक अभिवृद्धि लगी पोषण युक्त खाइबार भूमिका बहुत जरूरी है। ममता PMMVY योजना मातृत्वर इ जरूरी समय थी साहज आउ सचेतनता सृष्टि करबार दिगे उल्लेखनीय पदक्षेप नहींछे। भरपूर पोषण आउ छुआ बेलर प्रारंभिक जतन शिशुर मस्तिष्क विकास शिक्षा आउ विद्यालय लगी प्रस्तुति गोटे असल नहीं पकई थी। बांग्लादेश राजधानी ढाका न आईबा नवेम्बर मासर 13 तारीख नु दृष्टिबाधित एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेल जा लगी 24 जनिया संभाव्य भारतीय खिलाड़ी बछा हीछन। इथि ओडिशा 3 जन खिलाड़ी देवराज बेहरा नकुल बड़नायक सुखराम माझी ठान पाइछन। खिलाड़ी मानक लगी ई मास शेष हप्तान बेंगालुरु ठाने गोटे प्रशिक्षण शिविर आयोजन कराई। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर आउतार पाखर इलाकान सक्रिय लघुचाप क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग देकरी उत्तर उपकूल आंध्रप्रदेश आउ दक्षिण ओडिशा आड़के जाउछे। इतार प्रभाव थी आईबा 24 घंटा भितर राज्यर सबु जिलान वर्षा हवा बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सतर्क सूचना जारी कराइछे। आईबा 7 दिन तक राज्यर केतरा जागान हालकानु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहीछे बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सूचना दियाइछे। शेषे मुख्य खबर भेरघाए नुआदिल्ली न चली 18 नंबर ब्रिक्स शिखर सम्मेलनी आज हेला उद्यापित। ब्रिक्स सम्मेलन थी गृहित होता नुआदिल्ली घोषणानामा मिलित दूरदृष्टि आ भविष्यत सहयोग लगी देवा स्पष्ट दिग्दर्शन कहले प्रधानमंत्री। संयुक्त आरब एमिरेट्स न निवेशक सम्मेलनी शेष करी ओडिशा फिरले मुख्यमंत्री कहले 16 बुझामणापत्र सहित 2,43,000 कोटी अधिक टंका मिलीछे पुंजी प्रस्ताव। आउ लघुचाप प्रभाव थी आईबा 24 घंटा भितर राज्यर पाखापाखि सबु जिला नहीं पारे धोकागड्डी सागे वर्षा। आज आंचलिक खबर न शेष होला जुहार।
1: संबलपुरी आंचलिक संवाद श्रोताबंधु आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र रू।

प्रधानमंत्री इजिप्टर राष्ट्रपति अब्दल फतेह एल सिसी सह द्विपाक्षिक आलोचना करिछन्ति। सामाजिक गणमाध्यम रे पोस्ट करी श्री मोदी कहिछन्ति उभय नेता आंचलिक विकासमूलक प्रसंग एवं भारत इजिप्ट भागीदारीता संपर्क नहीं आलोचना करिछन्ति जहां कि सांप्रतिक समय रे उभय देश मध्यरे संपर्क वृद्धि रे सहायक होईछि। इंडोनेशिया राष्ट्रपति प्रबंत सुबियंतो को सह होइतिबा आलोचना संपर्क रे श्री मोदी कहिछन्ति उभय देश विभिन्न क्षेत्र रे सेमानक मध्यरे रहिथिबा भागीदारी संपर्क को सुदृढ़ करिबा जारी रखिबे। प्रधानमंत्री श्री मोदी फिलिपाइन्स राष्ट्रपति फर्डिनांड आर मार्कोस को सह साक्षात आलोचना करिछन्ति। ब्रिक्स सम्मेलन रे फिलिपाइन्स रो अंशग्रहण को श्री मोदी स्वागत जनाइछन्ति। उभय नेता विभिन्न क्षेत्र रे द्विपाक्षिक सहयोग सुदृढ़ करिबाने सहमति प्रकाश करिछन्ति। उभय प्रतिरक्षा सुरक्षा वाणिज्य पूंजीनिवेश महाकाश रेल भित्तिभूमि फिनटेक शिक्षा पर्यटन प्रजुक्ति विद्या आदि क्षेत्र में समन्वय सुदृढ़ करिबा नै आलोचना करिछन्ति। प्रधानमंत्री उगांडार उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपल आलुपो दक्षिण आफ्रिका और बुरुंडीर राष्ट्रपति एवं नाइजीरिया उपराष्ट्रपति सह विभिन्न क्षेत्र में द्विपाक्षिक सहयोग सुदृढ़ करिबा नै आलोचना करिछन्ति। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज उज्बेकिस्तानर उपप्रधानमंत्री तथा अर्थमंत्री जामशेद कुचकारोवक सह साक्षात आलोचना करिछन्ति। सामाजिक गणमाध्यम रे पोस्ट करी श्रीमती सीतारमण कहिछन्ति आलोचना काल रे द्विपाक्षिक अर्थनैतिक सहयोग सुदृढ़ करिबा नै उभयंक मध्यरे सहमति प्रकाश पाइछि। उभय नेता द्विपाक्षिक स्वार्थ संबलित विभिन्न प्रसंग रे मत विनिमय करिछन्ति। आपण माने संवाद सुनुछन्ति आकाशवाणी रो। स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह आसंताकाली मुंबई ठारे हिंदी दिवसर उद्घाटनी अधिवेशन एवं षष्ठ भारतीय राजभाषा सम्मेलन रे उद्बोधन देबे। स्वराष्ट्र मंत्रालय अधीन रे सरकारी भाषा विभाग द्वारा आयोजित एही दुई दिनिया सम्मेलन रे बहुसंख्यक शिक्षाविद साहित्यिक विद्यार्थी एवं वरिष्ठ सरकारी अधिकारी माने जोग देबे। कार्यक्रम रे हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करिबा एवं एहाकु भारतर अन्यान्य भाषा सह समन्वय रखिबार प्रयास करिबा लागि आलोचना हेबो। उद्घाटनी अधिवेशन रे श्री शाह 2025-26 वर्ष लागि राजभाषा गौरव एवं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करिबे। हिंदी भाषार प्रोत्साहन एवं कार्यकारी क्षेत्र रे अनन्य अवदान थिबा अनुष्ठान एवं व्यक्ति विशेषंकु एही पुरस्कार प्रदान करा जिवो। स्वतंत्र अधिवेशन रे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गान करा जिवो। सम्मेलन रे वंदे मातरम कु नै राजभाषा भारती स्वतंत्र संख्या समेत बहुसंख्यक पुस्तक मध्य उन्मोचित हेबार कार्यसूची रहिछि। स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह समग्र देशरे आसंता 17 तारिखरु अक्टोबर 17 तारिख पर्यंत भारतीय जनता पार्टी कर्मी एनडीए अंशीदार दल एवं अन्यान्य स्वेच्छासेवी संगठनगुड़िक सेवा संकल्प अभियान करिवे बोली आज घोषणा करिछन्ति। मुंबई ठारे गणमाध्यम को सूचना दे श्री शाह कहिछन्ति जनभागीदारी माध्यम रे विकसित भारतर लक्ष्य पूरण करिबा लागि एही अभियानर लक्ष्य रहिछि। सेप्टेम्बर 17 तारिख प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक जन्मदिवस होइथिबा बेले अक्टोबर मास मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री भावे जनसेवा क्षेत्र रे 25 वर्ष पूरण हेउछि। स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह आज भारतीय रत्न एवं अलंकार शिल्प को आह्वान दे कहिछन्ति प्रयोगशाळारु उत्पादित हेउथुबा हीरार विनिर्माण श्रृंखला संपूर्ण रूपे भारतीयक निकट रहिछि। मुंबई रे 52तम भारतीय रत्न एवं अलंकार पुरस्कार प्रदान उत्सव रे जोग दे श्री शाह कहिछन्ति प्रयोगशाळारे उत्पादित हेउथुबा हीरा रे व्यावसायिक स्वरूप परिवर्तित हेउछि एहा भारत पई एक पर्याप्त सुजोग बोली से कहिछन्ति। श्री शाह कहिछन्ति भारत निकटरे थिबा भित्तिभूमि क्षमता पूंजी उद्यमिता प्रतिभा को उपयुक्त सुजोग प्रदानर आवश्यकता रहिछि। केन्द्र विज्ञान और प्रजुक्ति मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कहिछन्ति महामारी परिचालन रे भारत बहु आगक गति करिछि। महामारी दमन पाई प्रतिषेधक टीका प्रस्तुति क्षेत्र में भारतर वैज्ञानिक दक्षता विश्वस्तर में प्रमाणित होइछि। महामारी निराकरण क्षेत्र में नवसृजन एवं पूंजी विनियोगकारी परिषद तरफ नूआदिल्ली आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में डॉक्टर सिंह जोग देइछन्ति। इंडोनेशियार जाभा समुद्र रे आज एक जहाज बुड़ी घटना रे 6 जणकर मृत्यु होइथिया बेले 130 जण यात्री एवं क्रू सदस्य निखोज थिबा जणा पडिछि। 240 रु ऊर्ध यात्री को नै जाउथुवा जहाजटी प्रतिकूल पानी पाग जगु ओल्टी पडिथिबा जणा जाइछि।

0: नमस्कार श्रोताओं, घड़ी में बज चुके हैं 8:30 और समय हो गया है आपके पसंदीदा खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आकाशवाणी के स्टूडियो से मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती। हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल मैदान की हर खबर के साथ, जिसमें हम आपको देंगे हर मैच का अपडेट और हर मैदान का हाल। तो चलिए बिना देर किए रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों का। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रिकॉर्ड 6वीं बार जूनियर एशिया कप जीता। महिला टीम ने भी खिताबी हैट्रिक लगाई। दोनों ने विश्व कप का टिकट पक्का किया। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में जारी। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एलेना रायबाकिना ने कल महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने सामने होंगे। तो श्रोताओं, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं चीन के मोकी के मैदान पर, जहां हमारे जूनियर हॉकी खिलाड़ियों ने आज वो कर दिखाया है जिस पर पूरे देश को नाज है। मोकी में भारतीय तिरंगा पूरी शान से लहरा रहा है, क्योंकि हमारी महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। महिला टीम ने चीन को 1-0 से हराकर जहां खिताबी हैट्रिक लगाई, वहीं हमारे गबरू जवानों यानी कि पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त देकर 6वीं बार इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। पूरे मैच का हाल जानते हैं और सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: सानिका चंद्रकांत माने के गोल की बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर खिताबी हैट्रिक लगाई है। मौजूदा चैंपियन भारत के लिए सानिका ने 17वें मिनट में निर्णायक गोल किया। पहले क्वार्टर में दोनों टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे क्वार्टर के शुरू होने के 2 मिनट बाद सानिका ने शानदार सूझबूझ दिखाते हुए गोल किया। चीन को बराबरी करने के लिए एकमात्र अवसर पेनल्टी कॉर्नर से मिला, लेकिन चीन की टीम उसे भुनाने में नाकाम रही। भारत ने अंतिम क्वार्टर तक चीन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया और 1-0 से जीत दर्ज कर ली। पूरे टूर्नामेंट में बिना कोई मैच हारे एलीट पूल में 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ शीर्ष पर रहने के बाद भारत ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। वहीं फाइनल में चीन को हराकर लगातार 3री बार खिताब बरकरार रखा। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगातार 4थी और कुल 6ठी बार यह खिताब अपने नाम किया। अजीत यादव, अनमोल एक्का, प्रभदीप सिंह और आशु मौर्य ने गोल किए, जबकि कोरियाई टीम के लिए एकमात्र गोल ली मिनह्योक ने किया। अजीत ने 9वें मिनट में भारत के लिए पहला गोल किया, जिसके बाद इक्का ने 13वें मिनट में गोल करके भारत की बढ़त को 2 गुना कर दिया। पहले क्वार्टर के अंत तक भारत 2-0 से आगे हो गया। प्रभदीप ने 21वें मिनट में 3रा गोल किया। भारत ने हाफ टाइम तक कोरियाई टीम पर 3-0 की बड़ी बढ़त बना ली। आशु ने 50वें मिनट में एक और गोल करके टीम की बढ़त को 4-0 कर दिया। इसके बाद मिनह्योक ने 54वें मिनट में कोरियाई टीम के लिए गोल किया, लेकिन उनका ये एकमात्र गोल कोई खास असर नहीं डाल सका और भारत ने 4-1 से मैच जीतकर 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस जीत के साथ दोनों ही टीमों ने जूनियर विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है, यानी कि जूनियर विश्व कप के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, जैसा कि

0: वे हमने रिपोर्ट में सुना। इसके साथ ही भारत ने चौथी बार यह खिताब जीतकर पाकिस्तान के लगातार 3 खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और इससे पहले भारतीय टीम ने 2015, 2023 और 2024 में खिताब जीते थे। इस शानदार उपलब्धि पर हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी को 3,00,000 रुपए और सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 1,50,000 रुपए के पुरस्कार राशि देने की भी घोषणा की है। तो बहुत जायज है कि इस तरह कि जो प्रोत्साहन राशि मिलते हैं उससे खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ता है। तो शुरुआत अच्छी रही हमारी आज की खेल जगत में, लेकिन अगर आपको लगता है कि आज भारत ने सिर्फ हॉकी के मैदान पर ही परचम लहराया है तो जरा अपनी नजरें जापान की तरफ भी घुमाइए, क्योंकि जहां हौसले बुलंद हो वहां पदक खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। हम बात कर रहे हैं जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल की, जहां हमारे स्टार खिलाड़ी और 6 बार के विश्व चैंपियन प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स में स्वर्णिम सफलता हासिल की है। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आज प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स SL3 में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष डबल्स SL3 SU5 में प्रमोद ने सुकांत कदम के साथ रजत पदक भी हासिल किया।
1: छह बार के विश्व चैंपियन प्रमोद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष सिंगल्स SL3 के फाइनल में अपने ही देश के उमेश कुमार को 30 मिनट में 21-16, 21-8 से हराया। इसके बाद उन्होंने पुरुष डबल्स SL3 SU5 के फाइनल में सुकांत कदम के साथ जोड़ी बनाई। हालांकि इंडोनेशिया के हिकमत रमदानी और फ्रेडी सेतियावान से 5-21, 15-21 से हार के बाद भारतीय जोड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। कदम के लिए यह टूर्नामेंट खास रहा क्योंकि 12 वर्षों के करियर में उनके कुल पदकों की संख्या 100 हो गई। भारत ने विभिन्न वर्गों में कई अन्य पदक भी हासिल किए। चिराग बरेठा ने सिंगापुर के वेई मिंग टे के साथ पुरुष डबल्स SU5 में स्वर्ण पदक जीता। शशांक कुमार ने 2 कांस्य पदक जीते। दीप रंजन बिसोई और कुलदीप महकूल ने भी पुरुष डबल्स SL3 SU5 में कांस्य पदक जीता, जबकि तकर बिरी और हर्षित चौधरी इसी वर्ग में तीसरे स्थान पर रहे। अभिजीत सखुजा ने पुरुष सिंगल्स SL3 में कांस्य पदक जीता। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
0: बैडमिंटन की बात हो रही है जहां एक तरफ स्वर्णिम सफलता हासिल की है प्रमोद भगत ने, तो वहीं पे बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में 15 साल की तन्वी पत्री ने भी लड़कियों के अंडर-17 सिंगल्स का खिताब जीता। रोमांचक फाइनल मैच में आज तन्वी ने भारत की ही शाइना मणिमुथु को 11-15, 15-10, 15-12 से शिकस्त दी। अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: तन्वी ने इस साल पोंटियानक अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था और इसके बाद बेंगलुरु में अखिल भारतीय जूनियर अंडर-19 बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट भी अपने नाम किया। अपने करियर में 2024 में अंडर-15 एशियाई खिताब के साथ तन्वी ने इस बार महाद्वीपीय अंडर-17 खिताब भी जोड़ लिया है। दूसरी वरीयता प्राप्त तन्वी ने फाइनल तक पहुंचने के दौरान कई मुश्किल मैच खेले। तन्वी की जीत के साथ अंडर-17 लड़कियों के सिंगल्स का खिताब लगातार दूसरे साल भारत के पास बरकरार रहा। 2025 में दीक्षा सुधारकर ने यह ऐतिहासिक खिताब जीता था। पिछले साल अंडर-15 एशियाई खिताब जीतने वाली मणिमथु को इस बार रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अंडर-15 वर्ग में भी भारत के खाते में एक और पदक जुड़ा। लड़कों की डबल्स जोड़ी आदित्य सिंह नेगी और तन्मय वर्मा ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही भारतीय दल का इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में सफल अभियान समाप्त हुआ। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब कोर्ट के इस शटल गेम से निकलकर सीधे रुख करते हैं उस खेल की तरफ जो हम भारतीयों की रग रग में दौड़ता है, यानी कि क्रिकेट। तो आज एक नहीं बल्कि दो जगह क्रिकेट का रोमांच चरम पर है और इस वक्त हमारी नजरें टिकी हुई है दुबई पर, जहां महिला T20 एशिया कप का महामुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। 7 बार की चैंपियन भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है और ताजा समाचार मिलने तक हमारी शेरनिया क्रीज पर डटी हुई है। इस वक्त हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशेष, क्या है ताजा अपडेट मैच को लेकर के?
3: जया, भारतीय टीम को शुरुआत काफी धमाकेदार मिली है। लगभग 10 के औसत से भारतीय टीम ने 8.3 ओवर में 84 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना और शफाली वर्मा अभी क्रीज पर डटी हुई हैं। भारतीय टीम ने कोई भी विकेट नहीं गवाया है। शफाली वर्मा 27 गेंदों पर 58 रन बनाकर 8 चौके और 2 छक्के लगा चुकी हैं। वहीं स्मृति मंधाना पारी को एंकर

0: कर रही हैं, जिन्होंने 25 गेंदों पर 31 रन बनाए हैं, 3 चौके और 1 छक्के उनकी पारी में शामिल हैं। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो श्रीलंका की ओर से चमारी अट्टापट्टू जो सबसे बड़ा खतरा मानी जा रही थी भारत के लिए, भारतीय टीम ने उन पर ही अटैक करके एक ओवर में 20 रन लगाए हैं स्कोरबोर्ड पर।
1: तो जिस तरह से दोनों ही टीम है अभी तक मैच में, पूरे टूर्नामेंट में देखिए तो कोई भी हार नहीं मिली है इन्हें, अब तक अजय रही है और फाइनल तक पहुंची है। अगर हम एशियन, अगर हम पूरे सफर की बात करें भारतीय टीम का, तो कैसा सफर रहा पूरे टूर्नामेंट में?
0: भारतीय टीम का सफर जो रहा है जया, बेहद शानदार रहा है। जैसा आपने बताया कि टीम जो है, ये दोनों ही टीमें अजय रही हैं इस टूर्नामेंट में, और पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड को 94 रन से, दूसरे मुकाबले में हांगकांग को 137 रनों से, और उसके बाद अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 55 रन पर ऑल आउट करके 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया था। सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने टक्कर देने का प्रयास जरूर किया था भारतीय टीम को, लेकिन 40 रन से भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी। भारत अपने 8वें खिताब की जद्दोजहद कर रहा है। इससे पहले 4 ओडीआई और 3 T20 प्रारूपों में भारत कुल 7 बार यह खिताब अपने नाम कर चुका है।
1: बिल्कुल, और इस बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच भी 3 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच शुरू हो चुका है। टॉस भारत के पक्ष में रहा, कप्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस मैच का क्या अपडेट है अभी?
0: जया, अगर भारत और अफगानिस्तान के मुकाबले की बात करें तो 14 ओवर में 87 रन पर 5 विकेट हो चुके हैं अफगानिस्तान का स्कोर। अजमतुल्ला उमरजाई और मोहम्मद नबी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उमरजाई 27 गेंदों पर 26 रन, वहीं नबी 22 गेंदों पर 16 रन। ये दोनों स्कोर ये दर्शाते हैं कि भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को बिल्कुल बैकफुट पर रखा हुआ है। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती ने एक एक विकेट लिया और एक विकेट जो है वो रनआउट के तौर पर हुआ है।
1: बिल्कुल, अगर एशियन गेम्स के पहले अगर हम देखें तो सीरीज कितनी महत्वपूर्ण लगती है, विशेष क्योंकि भारतीय टीम चाहेगी कि अपने हालिया फॉर्म को वो बरकरार रखे।
0: जय, अगर बात करें तो ये सीरीज जो है वो एक वार्म अप के तौर पर साबित होगी अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि एक अफगानिस्तान है जो कड़ी टक्कर दे सकता है भारतीय टीम को, क्योंकि इसके बाद भारत को एक मुकाबला जापान से खेलना है और फिर सीधे एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में मुकाबला होगा, जहां वो पहले ही अपनी जगह बना चुकी है रैंकिंग के आधार पर। तो ये जो मुकाबला है, ये जो सीरीज है, ये भारत के लिए एशियन गेम्स का जो तैयारी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, तो अब क्रिकेट के इस लाइव अपडेट्स के बीच आपको ले चलते हैं श्रोताओं दुनिया के उस कोने में जहां टेनिस कोर्ट पर आज रात एक नया इतिहास लिखे जाने की तैयारी हो रही है। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात अमेरिका के बेन शेल्टन और जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने सामने होंगे। 23 वर्षीय शेल्टन अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलेंगे और 2 दशक से अधिक समय में कोई बड़ा सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले अमरीकी खिलाड़ी बनने की कोशिश करेंगे। वहीं 3 महीने पहले अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले ज्वेरेव लगातार 3री बार किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में खेलने जा रहे हैं। यह उनका दूसरा यूएस ओपन फाइनल होगा जो उनके पहले फाइनल में पहुंचने के 6 साल के बाद हो रहा है। तो सेल्टन के पास 2 दशक के बाद कोई बड़ा खिताब जीतने वाला पहला अमरीकी बनने का मौका है। और महिला सिंगल्स की बात करें तो इसका फैसला कल रात ही हो चुका है, जहां कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने आर्याना साबालेंका को हराकर पहली बार यूएस ओपन का ताज अपने सिर सजा लिया है। यूएस ओपन की इस बड़ी खबर के बाद अगर हम बात करें तो उन कोर्ट्स की, जहां आज का दिन भारतीय फैंस के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा भी रहा है। पहले बात वियतनाम ओपन बैडमिंटन की, जहां महिला सिंगल्स के फाइनल में भारत की ईशा रानी बरुआ को थाईलैंड के खिलाड़ी से सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें उप विजेता रहकर संतोष करना पड़ा। कुछ ऐसा ही मिला जुला भाग्य कोर्ट पर हमारी स्क्वाश सनसनी का भी रहा। कतर क्लासिक स्क्वाश प्रतियोगिता में भारत की अनाहत सिंह ने बेल्जियम की टिन्ने गिलिस को 5वें गेम तक जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन अंत में अनुभव की जीत हुई, यानी कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा था तो उनसे हार का सामना करना पड़ा अनाहत को। पुरुष सिंगल्स में भी अभय सिंह और वीर चोटरानी को अपने शुरुआती दौर के मुकाबलों में निराशा हाथ लगी, लेकिन खेल का नाम यही है, कभी जीत कभी सीख, उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे पर मैदान पर देश के लिए जान लड़ाने का यह जज्बा कभी कम नहीं होना चाहिए। तो एक बार चलते चलते मैच का ताजा अपडेट्स ले लेते हैं। विशेष
0: जय, अफगानिस्तान ने 14.3 ओवर में 93 रन बना लिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। और अगर वुमेन्स एशिया कप की बात करें तो भारतीय टीम जो है शानदार प्रदर्शन उनका जारी है, लगभग 10 ओवर में उन्होंने 98 रन बना लिए हैं बिना

0: किसी नुकसान के, तो ये मुकाबला जो है भारतीय टीम की झोली में आता नजर आ रहा है।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, इस रोमांचक मोड़ पर अब वक्त हो चला है इन सभी बड़ी खबरों के लाइव स्कोर्स को अभी यहीं समाप्त करने का। हम कल मिलेंगे फिर इसी समय, तो स्पोर्ट्स स्कैन में इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स स्कैन की ईमेल आईडी यानी sportsscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी

0: से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
2: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल

0: रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
1: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
0: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
3: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1,251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में

0: Ashwani. Please stay tuned in for our next announcement that follows shortly.
1: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath main Shakti Singh. नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग और प्रेरणा हो, प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर।
3: आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार सुमित लंबे समय से भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेर रहे हैं और देश भर के प्रमुख संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियों के कारण उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली है।
4: He also has numerous awards and achievements added to his name, which include संगीत रतन सम्मान, कला निधि सम्मान, स्वर साधक सम्मान एंड राष्ट्रीय कला गौरव सम्मान।
3: आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में सुमित सिंह पदम के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मधुरेश भट्ट। बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले मधुरेश भट्ट वर्तमान पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी तबला वादकों में से एक हैं। वे अपने पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र भट्ट के शिष्य हैं।
4: He possesses special abilities in fusion, jugalbandi and taal kachehri. His performances as a solo artist and as an accompanist has won admiration, appreciation and respect from the classical music world. An A-grade artist of All India Radio, he is a member of ICCR's Reference Panel of Artists.
3: आज के कार्यक्रम में सुमित सिंह पदम अपने वादन की शुरुआत राग रागेश्वरी से कर रहे हैं, जिसमें आलाप, जोड़ आलाप और जोड़ झाला के बाद विलंबत गत तीन ताल में, मध्य लय गत मत ताल में और अंत में तीन ताल में द्रुत गत पेश की जाएगी।
4: In tonight's concert, Sumit Singh Padam begins his recital with Rag Rageshwari, wherein Alap is followed by Jod Alap, Jod Jhala, and then Vilambit Gat in Teen Taal, Madhyalaya Gat in Mat Taal, and Drut Gat is in Teen Taal.